0: गुड न्यूज एफएम 105.1।
1: अब तपाई सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुता तेज रोकाको साथमा।